तवरी तवरी तवरी।

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: सुबह पंजाब में पीपी कश्मीर के जिले नायब सदर समेत टे जणा कतल पीपी कश्मीर जो नायब सदर आलमगीर कोश संदस अजीज माशू कोश ए नाजिम कोश पंजाब के इलाके दीनू शाह में हथियार बंधन हथा कतल संदन जा लाश सादिकाबाद अस्पताल मुंतकिल

0: सिक्योरिटी के मैदान में पाकिस्तान से मजबूत लगापा चाहूं था पाकिस्तान से गजल तामून वधाइण जा ख्वाहिशमंद आयूं। ईरान के सदर मसूद पज़िशकियान के पाकिस्तान के घरों वजीर मोहसिन नकवी से मुलाकात बाद मीडिया से गालियों। ईरानी मीडिया मूजिब पाकिस्तान के घरों वजीर मोहसिन नकवी तेहरान में ईरान के सदर मसूद पज़िशकियान से मुलाकात कई। ईरानी सदर चवण हो तो पाकिस्तान से मजबूत लगापा इलाकई सिक्योरिटी में इजाफे जो सबब बणजी सकन था। बतरफन लगापन से गयल मुफाद के तकवीत मिली। उनका अग मोहसिन नकवी ईरान के परदेही वजीर अब्बास इराकची से मुलाकात कई। खिते की ताजी सूरताल से गाल
1: दिफा वाले वजीर ख्वाजा आसिफ है अमेरिका ईरान माहदे के वेझो पहुंची चुका है। कुछ दिन का थींदड़ अगबराई सुठन खबरों तरफ वही रही है।

पेट्रोल शयुनि जे अघनि में हिकु ॾींहं लाइ फेरफार। पेट्रोल 1.70 रुपया सस्तो ऐं डीज़ल 1.39 रुपया फी लीटर महांगो थी वियो। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल जी नई क़ीमत 325.92 रुपया फी लीटर मुक़रर। डीज़ल जी नई क़ीमत 382.25 रुपया फी लीटर थी वई। पेट्रोल शयुनि जा नवां अघु सिर्फ़ हिकु ॾींहं लाइ मुक़रर कया विया।

0: सूबनि जी ॻाल्हि का नई न आहे। सिंध संभली पहिरियां बि नवनि सूबनि खे रद्द करे चुकी आहे। ज़रूरत पई त सिंध संभली मां वधीक ठहराउ बि पास कयो वेंदो। असांखे केरु रोकण वारो न आहे। सिंध जे अवाम खे पीपल्स पार्टी ते मुकमल भरोसो आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी कराची में आर्ट काउंसिल में ॻाल्हि ॿोल। मुराद अली शाह चयो त मरियम नवाज़ खे मुखातिब थींदे सदन वधीक चयो त जेकॾहिं मरियम नवाज़ खे सिंध में सियासत जो शौक़ु आहे त सिंध अची सियासत करे, वोटर लिस्ट में पंहिंजो नालो शामिल कराए ऐं इलेक्शन विड़े। मीर रज़ा जे मामले में पुलिस जूं कोताहियूं आहिनि, पर आउं हुन बाबति कुझु नथो चवां। मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे त केस जी जाच सही तरीक़े सां थिए। प्रिया कुमारीअ बाबति वॾे वज़ीर चयो त जेकॾहिं प्रिया जे बारे में का ॼाण हुजे हा त अॼु ई खेसि बाज़ियाबु कराए वठूं हा। कोशिश आहे त प्रिया समेत गुम थियल समूरा ॿार बाज़ियाबु थियनि।
1: चेयरमैन नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर जनरल आमिर रज़ा खे निशान ऐं इम्तियाज़ मिलिट्री ॾियण वारे तक़रीब विमान सदर में सदर आसिफ ज़रदारी जनरल आमिर रज़ा खे निशान ऐं इम्तियाज़ मिलिट्री सां नवाज़ियो वियो। तक़रीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ऐं सर्विस चीफ नायब वज़ीर आज़म इसाकदार ऐं ॿियनि शिरकत कई।
0: पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेस जो कामयाब ऑपरेशन, पंज खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब गुजे इतलाउ कयल ऑपरेशन दौरान फितरुल हिंदुस्तान जा पंज खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। सदन कब्ज़े मां वॾे तइदाद में हथियार ऐं बारूदी मवाद बि हथ। कामयाब कार्रवाई ते सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां फोर्सेस खे भेटा पेश।
1: पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जो 15 अगस्त खां पंप्स बंदि करण जो ऐलान। समूरे मुल्क में पेट्रोल पंप 15 अगस्त सुबुह 6 वॻे खां अणॼातल मुदे ताईं बंदि रहंदा। अॻवाण जो चवणु आहे त असांजो सबुर जवाब ॾेई वियो आहे। हुकूमत 2 हफ़्तनि दौरान हिकु भेरो बि राब्तो न आहे कयो। मुतालबनि जी मञता ताईं पेट्रोल पंप्स बंदि रहंदा।
0: गुड्स ट्रांसपोर्ट जूं वफ़ाक़ी वज़ीर अलीम ख़ान सां इस्लामाबाद में ॻाल्हियूं कामयाब। तय थियल मुआदे खे हतमी शकल ॾिनी वई। अलीम ख़ान ट्रांसपोर्टर्स खे वेट स्टेशननि बाबति बि मसइला हल करण जी ख़ातिरी कराई। ज़रियनि मूजिबि हुकूमत 7 खां 15 ॾींहनि ताईं पेट्रोल जा अघ न वधाइण ऐं साल ताईं टाल टैक्स में वाध न करण जी ट्रांसपोर्टरनि खे ख़ातिरी कराई आहे। आल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट ग्रेड अलायंस बि कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे फीथा रोक हड़ताल जी मुखालफत करे छॾी।
1: रावलपिंडी जे माल रोड ते सिक्योरिटी फोर्सिस मथां फायरिंग कंदड़ हथियारबंद जवाबी फायरिंग में मारिजी वियो। फायरिंग जी ॾे वठि में हिकु जवान बि ज़ख़्मी। रावलपिंडी पुलिस मूजिबि मारिजी वियल हथियारबंद जो वास्तो हिकु मख़सूस सियासी जमायत सां आहे। दहशतगर्द जे कब्ज़े मां हथ आयल मोबाइल फोन ऐं ॿिए सामान मां वधीक शायदियूं साम्हूं ईंदियूं। वफ़ाक़ी वज़ीर अताताड़ चयो आहे त PTI सदाई तशद जी सियासत कई आहे। माल रोड ते बि PTI कारकुननि ॾींहुं ॾिठे फोर्सिस मथां फायरिंग कई।

0: सिंध हुकूमत जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे बर्थिन ऐं इम्तिहानी निज़ाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुतारिफ़ कराइण जो फ़ैसिलो। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह जी सदारत हेठि इजलास में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे चेयरमैन, आईटी सेक्रेटरी ऐं ॿियनि जी शिरकत। चीफ सेक्रेटरी चयो त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी मदद सां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे इम्तिहानी अमल खे वधीक सराहितो बणायो वेंदो। पर्चा तयार करण ऐं असेसमेंट लाइ जदीद टेक्नोलॉजीअ खां फ़ाइदो वरितो वेंदो। इम्तिहानी निज़ाम जे कुझु मरहलनि में गैर ज़रूरी इंसानी मुदाख़लत घटाइण लाइ AI इस्तेमालु कई वेंदी। IA जे इस्तेमाल बावजूद मेरिट, शफ़ाफ़ियत ऐं इंसाफ़ जा उसूल बरक़रार रखिया वेंदा।
1: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जे मुबैन अलातार ख़िलाफ़ मुतासिर उमेदवारनि जे इतिजाज कंहिं पुणे ॾींहं बि जारी। सिंध स्टूडेंट एक्शन कमेटी SPSC समेत इम्तिहानी निज़ाम में सुधारण लाइ 12 नुक़्तनि ते बदल जारी करे छॾियो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे मौजूदा चेयरमैन मोहम्मद रिज़वान ऐं समूरनि मेंबरनि खां इस्तीफ़ा जो मुतालबो। CCE 2024 जा नतीजा रद्द करे इम्तिहान वठणु इंजीनियरिंग केडर जा इंटरव्यू रद्द करे ॿीहर इंटरव्यू जो मुतालबो कयो वियो।

सेंट्रल जेल मां कैदी अमजद कोराई जे फरार थियण वारे वाके जी इंक्वायरी रिपोर्ट पधरी थियण बाद डिप्टी जेल सुप्रिंटेंडेंट समेत पंज अहलकारनि खे सज़ा। एएसआई ऐं टे पुलिस अहलकार बरतरफ। जेल सुप्रिंटेंडेंट समेत टिन अहलकारनि जूं पंजनि सालनि जूं इंक्रीमेंट ख़तम। डिप्टी जेल सुप्रिंटेंडेंट आसिफ कोराई, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट महदी रज़ा वसाण जबरी रिटायर। जॾहिं त बरतरफ अहलकारनि में एएसआई अतार मलण, पुलिस कांस्टेबल कमाल दीन चाचड़, सुधीर मलण ऐं ईमान अली मेतलो शामिल।

0: मलीर में ट्रैफिक पुलिस हलकार निगरी के अगवा कोशिश नाकाम बनाए छड़ी निगरी के अगवा करे गाड़ी में खड़ी विदर जवाबदार सोगो पोर्ट कासिम जोरंगी जे सेक्शन ट्रैफिक पुलिस निगरी आलिया जे रड़ियुन ते गाड़ी के रोके खेस बाजियाब कराए जवाबदार फरीद असलम के सोगो करे वरतो।
1: सिंध समेत समूरे मुल्क में आजादी जश्न मल्हाइण जो तैयारियां जारी। सूबे के नंढन वडन शहरन में कौमी झंडन की बहार, खास स्टॉल भी लगाया व्या।
0: में शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो नेट पंजे पुराने गर्लफ्रेंड से शादी के बंधन में बंधजी वो। पुर्तगाल से ताल्लुक रखड़ दुनिया के मशहूर फुटबॉलर 41 वर्ष के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 32 वर्ष की जॉर्जिना से शादी कई। पुर्तगाल के शहर कास्काइस में शादी की तकरीब थी जैमें संदन पंज बार भी शिरकत कई। रोनाल्डो शादी की तस्वीर सोशल मीडिया से शेयर कर छी।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ए ज़रख़ेज़ी असां जे हारिय साईं ताहिन आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

पंजाब में पीपी कश्मीर के जिले नायब सदर समेत टे जणा कतल। पीपी कश्मीर जो नायब सदर आलमगीर कोश, संदस अजीज माशू कोश ए नाजिम कोश पंजाब के इलाके दीनू शाह में हथियार बंदन हथा कतल। संदन जा लाश सादिकाबाद अस्पताल मुंतकिल।

0: सिक्योरिटी जे मैदान में पाकिस्तान सा मजबूत लागापा चाहूं था पाकिस्तान सा गजल तामुन वदाइण जा ख्वाहिशमंद आयूं। ईरान जे सदर मसूद पज़िशकियां जे पाकिस्तान जे घरो वजीर मोहसिन नकवी सा मुलाकात बाद मीडिया सा गालियूं। ईरानी मीडिया मूजिब पाकिस्तान जे घरो वजीर मोहसिन नकवी तेहरान में ईरान जे सदर मसूद पज़िशकियां सा मुलाकात कई। ईरानी सदर चवण हो त पाकिस्तान सा मजबूत लागापा इलाइक़ाई सिक्योरिटी में इज़ाफ़े जो सबब बणजी सघनि था। बतरफ़ लागापन सां गयल मुफ़ाद खे तकवीत मिलंदी। उन खां अॻु मोहसिन नकवी ईरान जे परॾेही वज़ीर अब्बास राइकती सां मुलाकात कई। खिते जी ताज़ी सूरताल ते ॻाल्हियूं।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमाम
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आप सुन रहे हैं
4: GAFM 88
3: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

just be

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाई।

सिक्योरिटी के मैदान में पाकिस्तान से मजबूत लागापा चाहूं था। पाकिस्तान से गडियल ताउन वधाने जा ख्वाहिशमंद आयूं। ईरान के सदर मसूद पज़ीशान जी पाकिस्तान के घरू वजीर मोहसिन नकवी से मुलाकात बाद मीडिया से गालियूं। ईरानी मीडिया मौजूद पाकिस्तान के घरू वजीर मोहसिन नकवी तेहरान में ईरान के सदर मसूद पज़ीशान से मुलाकात कई। ईरानी सदर जो चवण हो तो पाकिस्तान से मजबूत लागापा इलाकाई सिक्योरिटी में इजाफे जो सबब बनजी सगन था। बतरफन लागापन से गडियल मुफाद के तकवीयत मिलंदी। इन खां अग मोहसिन नकवी ईरान के परदे वजीर अब्बास इराकची से मुलाकात कई। खिते के ताजी सूरत हाल से गालू कई। अमेरिकी सदर के ईरान के हमले के खौफ का कंटेनर में मुंतकिल बे जहाज में मुंतकिल कयो वयो। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट दावा कई है तो गुजरियल महीने तुर्की में नेटो इजलास बाद कातलाने हमले के खौफ का मुख्तसर सिक्योरिटी ऑपरेशन किया वो। अमेरिका के इसराइल तरफा इतला मिलो हो तो ईरान कुल्हे ते रखी फायर करने वाले मिजाइल से ट्रंप के जहाज के निशानो बनाए सके तो। पंजाब में पीपी कश्मोर के जिले नायब सदर समेत टे जणा कतल। पीपी कश्मोर जो नायब सदर आलमगीर कोश संदस अजीज माशू कोश ए नाजिम कोश पंजाब के इलाके दीनू शाह में हथियारबंदन हथा कतल। लाश सादकाबाद अस्पताल मुंतकिल कयो वयो। वारसन जो चवण है तो आलमगीर कोश ए संदस साथी पंजाब के अहमदपुर थाने की हद बोहेवाड़ में यासिन के घर में तरसियल हुआ तो हथियारबंदन हमलो कर खेन कतल कयो आहे। सिंध हाई कोर्ट में टिन एडिशनल जजन हल्फ खणी वरतो। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस जफर अहमद राजपूत एडिशनल जजन का हल्फ वरतो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान जस्टिस सुरेश कुमार ए जस्टिस शाहनवाज मेमण हल्फ खयों। हल्फ बरदारी की तकरीब में हाई कोर्ट जा जज बार जा नुमाइंदा ए सीनियर वकील शरीक थिया। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में हिकु ॾींहुं लाइ फेरफार। पेट्रोल 1 रुपयो 70 पैसा सस्तो ऐं डीज़ल 1 रुपयो 39 पैसा फी लीटर महांगो थी वियो। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल जी नई क़ीमत 325 रुपया 92 पैसा फी लीटर मुक़ररु। डीज़ल जी नई क़ीमत 382 रुपया 25 पैसा फी लीटर थी वई। पेट्रोलियम शयुनि जा नवां अघ सिर्फ़ 1 ॾींहुं लाइ मुक़ररु कया विया। पाकिस्तान के नौजवान जो अज़म तवानाई ए तकलीकी सलाहियतूं कीमती असासो आहिनि। नौजवान के बाख़्तियार बणाइण वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर आसिफ ज़रदारी जो नौजवान के आलमी लिहाड़े ते पैगाम। संदस चवण है तो मयारी तालीम बाइज़त रोज़गार ए जिदत नौजवान जो गडियल ख्वाहिशूँ आहिनि। पाकिस्तान की तकरीबन 67% आबादी 30 वरन का घट उम्र के नौजवान से बदल है। नौजवान पाकिस्तान जो सब का वो इंसानी सरमायो आहिनि।

0: सखर जी अदालत कत्ल केस जो डो साबित थियण बदरा जवाबदार के उम्र कैद जी सजा बुधाए छी। फर्स्ट एडिशनल सेशन कोर्ट जे जज जवाबदार अली बख शेख के उम्र कैद 30 लख रुपया दंड जी सजा बुधाए छी। मुआवजो अदा न करण जी सूरत में जवाबदार के वधीक 6 महीना कैद भोगणी पवंदी। 2020 में साले परताणे जी हद में जवाबदारनि घोटाणे के कत्ल कयो हो। जश्न आज़ादी में 2 ॾींहं रहिजी विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। सूबे जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार, ख़ासि स्टॉल बि लॻाया विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया, सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्ररा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
4: सिंध के माथे का झूमर
5: GFM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: It's 11:15 AM.
2: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला बयार सोना यूरिया जो मोती जड़ो दानो छटाई करने में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम। यू आर शेयरिंग एंटरटेनमेंट रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, सीर सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, सिंध की आवाज। हर यू कैसे हैं आप? आई होप सो गुड। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सेट कूल एक सॉन्ग एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद हैं देखो मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं, पूरी पूरी। एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है, जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM। आपको और मेरा साथ रहता है और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में अगर हम वक्त की बात करते हैं सबसे पहले तो वक्त हुआ जाता है जी 11:22 जो कि पाकिस्तान का मियारी वक्त है। तमाम तर लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में है, ट्रक में है, रिक्शा में है, कार में है, बाइक में है, जिसमें भी जहाँ भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ जर्नी, बट एट द नेवर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए और ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। वफ़ज़ली खुदा खैरियत दे मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत।

प्रोग्राम में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार्ड से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस कीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 888 1. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है FM 88. इस पेज पे आने के बाद आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488. इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं आप लोग. हमें जरूर कॉल करें और ज्वाइन करें हमें. और इसके साथ साथ हम प्ले करने जा रहे हैं एक और सॉन्ग और इसको सुनेंगे, एंजॉय करेंगे. छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

0: It's 11:30 AM. This soundtrack is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाए. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.

0: हिन मिट्टीअ जा रंग रौनक ऐं ज़रख़ेज़ असांजे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयारु कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छकाई करण में आसान ऐं नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाब करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: अगर खूबसूरती खपे तो आर्ट्स अपनायो आर्ट्स ब्यूटी क्रीम एलोवेरा और एवोकाडो अवां जी सेंसिटिव स्किन के अंदर खां रिपेयर करे सिर्फ 10 दिन में डार्क स्पॉट्स एक्नी और स्कार्स घटाए स्किन के बनाए रेडिएंट स्पार्कलिंग और दिए शानदार मिरेकल ग्लो कुदरती चमक और निखार जो बेहतरीन इंतखाब आर्ट्स ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट बाय आगास इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
2: खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: फैन, तू ना मेरा हेटर, तू तो मेरा फैन।
1: राइट एज ब्यूटी ट्री 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिससे मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: छा तमाम भी पैंजो ख्वाबन जो घर एक अहड़ी जाए थे ठाण चाहो था जिते हो जे तहफुज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: रंग रौनकू जरखेजी असाजे हारिय साई ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधी का मान वधायन लाए तमासा गर रहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी साथ तैयार कर आला मायार जो सोना यूरिया जैजो मोतिये जड़ो दानू छटाई करन में आसान ने नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

ਹਬਲ ਅਲ ਵਰੀਦ ਵਤਨ ਆਵੇਂ ਦਾਸ ਮਾ

जनी जा थरन में वरथा वेण सहल ऊजे हक भंजल से सचू की सूमरा ओ जय सती सत न छदियो उहा मारुई मर जाई अचे उमर कोट में जहलोई न लजाई जा सागल सदाई उहा मारन म

0: जीअं शल पहिरीं वञा तन ॾे लालाईअ जो लतीफ़ चए अॻियां मन मारूं अड़न जे
1: अलाहूं

موجھ میں

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ऐं ज़रख़ेज़ी असां जे हारीअ सां ई त आहिनि आबाद हाणे इन जो अञा बि वधीक मान वधाइण लाइ तव्हां सां गॾु आहे सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजीअ सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी करे फसल खे अञा बि शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जा रंग रौनक ऐसर खेज असा जे हारी साईं दाहिन आबाद हाने इन जो अन्याब वधी का मान बधाएन लाए तवासा गदाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कय आला मयार जो सोना यूरिया जेंजो मोती जड़ो दाणो छकाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाब करे फसल की अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान बधाए
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: छा तवा जो ख्वाब आए डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी नर्स या हेल्थ प्रोफेशनल बन जाना तपई तवा लाए आए एक बेहत

0: ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजी रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है जी. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू. तो कॉल कीजिए 03000113488 के ऊपर. कॉल लेने जा रहे हैं शो की नेक्स्ट. हेलो
1: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कैसे भाई, ठीक ठाक? और मुझे बताइएगा कि प्रोग्राम सुन रहे हैं, गाना वाना सुनाएंगे?
1: प्रोग्राम गाना भी
0: तो सुना दे.
1: अभी गानो आजादी के हिसाब सा है जो असांगे बुझाए.
0: ओके, कौन सा?
1: कदम कदम कदम कदम

ओके जी, बिल्कुल जरूर सुनाते हैं जी. थैंक यू सो मच. एंड ये रहा आपका गाना और इसको हम सुनेंगे और इसी के साथ हम चलेंगे आगे. और मेरे ख्याल से कि हम ओरिजिनल वाला प्ले करते हैं, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड. ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, इसलिए असली वाला प्ले करेंगे.

ओके जी, इसके अलावा हमें बहुत सारे मैसेजेस रिसीव होते जा रहे हैं और मेरे ख्याल से ये भी ओरिजिनल नहीं है. मेरे ख्याल से अब जो मैं प्ले कर रही हूँ ना, शायद ये वाला ओरिजिनल है. ओके जी, फाइनली ओरिजिनल, एक और ओरिजिनल वर्जन. अच्छा, हमें मैसेज रिसीव हुआ है रजब अली मीरजट फ्रॉम सिंदरी. कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, पहली बार शो में शामिल हो रहा हूँ. शामिली शो जरूर करना. डेडिकेट अदा इमरान अली जावेद मीरजट एंड नंडड़ो एम हाशिम मीरजट. ओके, कर लिया शामिल. एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक होगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. हमारा सेगमेंट होने वाला है आज हरा भरा पाकिस्तान, तो उसमें मिलते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर बिचिए जो मान वधाए
3: तुर्किया विच में थियल मके दिफाई मुआहदे बाबत भी आगाह कयो खिते में जारी छिकताण के खात्मे के हवाले से भी तफसीली गालियों कई हुई बिन्हीं अगवाणन मौजूदा सूरत हाल में राबतन में रहने भी इतफाक़ किया।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जीएफएम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

ਸਾਹੀ ਵਿਆਸ ਜਤ ਰਿਸੀ ਮਰਾ ਪੇਹੀ ਜਾ ਪਾਣ ਮੇ ਕੈਨ ਰੂਹ।

ससुरसी पंजो थराक सजना जो चले पे दये जू कजनियो न सा जन जा पुछा हूं छा हूं ने

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की

0: लात हैं या जो मौजूदा दरख्त हैं उनको बचाने में या फिर अब नए दरख्त लगाने में, दोनों में से किस चीज को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए?
1: अगर हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में जंगलात ही वैसे ही कमी है, ठीक है, क्योंकि 25% जंगलात होने चाहिए हर मुल्क में, हमारे पास नहीं है। हमारा जो एक एवरेज रहता है 2.5 से 5. समथिंग तक इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, तो इसलिए जंगलात की उनकी भी हमें हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें यही है कि हमें जो है ना ज्यादा से ज्यादा नए दरख्त लगाने चाहिए, और सिर्फ पौधा लगाना ही मकसद नहीं होता, पौधे की हिफाजत करना, उसे परवान चढ़ाना भी जो है वो भी बहुत जरूरी होता है।
0: अच्छा, अगर देखा जाए पाकिस्तान की बात की जाए तो आप हमें ये बताइए कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो हमें इस वक्त किन शक्लों में नजर आ रहे हैं?
1: सबसे पहले तो हीट वेव है। अब पहले ये जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये हम सिर्फ जो है किताबों के थे, लेकिन हम लोग जो है ना खुद से हमने देखा नहीं था ये सारी चीजें ना, तो अक्सर चीजें हमें वो भी लगती थी कि पता नहीं कितना बाद में जाके ये चीजें हम जो है ना फेस करेंगे, लेकिन अब हम हर चीज के सामने हम देख भी रहे हैं। हीट वेव की वजह से जो है यूरोप में इस साल जो है तकरीबन 10,000 लोग उनकी मौत हुई है, कुछ रिपोर्ट्स में वो 15,000 से 20,000 तक भी आ रही है। तो ऐसे पाकिस्तान में भी क्लाइमेट चेंज की वजह से एक तो हीट वेव है, बड़ी हीट वेव की वजह से बहुत सारे लोग जो है हर साल फौत हो रहे हैं, उसके अलावा जो है ना बाकी उसकी वजह से पोल्यूशन भी हो रही है, मुख्तलिफ बीमारियों का हमें सामना भी हो रहा है, और फ्लड्स की सूरत में अगर हम देखें तो फ्लड्स जो है ना वो भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और उसके अलावा जो है लैंडस्लाइडिंग की तरफ अगर हम जाए, लैंडस्लाइडिंग भी जो है वो भी डिफोरेस्टेशन की वजह से हो रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक ज़रई मुल्क है, और ज़रई मुल्क जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज्यादा मुतासिर होता है, और हमारे पास वैसे भी माली तौर पर भी हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं है। अगर तो बाकी भी तरीके हैं जिससे हम जो है एग्रीकल्चर को हम सेव कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतने बजट नहीं है।

0: इंडस्ट्री पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है, क्योंकि अगर गाड़ियों की बात करें तो वो भी सबसे ज्यादा है, लोग भी सबसे ज्यादा है। तो अब हम ये चीजें तो कम नहीं कर सकते। अब हम किसी को कहेंगे कि अपनी जो है आप एक इंडस्ट्री आप शिफ्ट करें किसी और इलाके में, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना ही। अब हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं कि गाड़ियां हम उनकी कम कर दें। हाँ ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ, ईवी वाली तरफ हम शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन इस सब में भी वही बात है कि हमारे पास, हम लोग माली तौर पर हम लोग उतना स्ट्रांग नहीं है। उसके लिए यही है कि ज्यादा दरख्त लगाएंगे, वो हमारा जो क्लाइमेट है वो एक सही अपनी जगह पर आएगा, जैसा एक क्लाइमेट चाहिए उस शहर में उस हिसाब से हमें दरख्त लगाने चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा, दरख्तों की अगर एग्जाम की बात की जाए तो क्या हर जगह पे एक जैसा दरख्त लगाना सही है, या वो कौन से दरख्त हैं जो कि लगाने चाहिए क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए?
0: एक ही तरह के दरख्त भी नहीं लगाने चाहिए, मिक्स करके लगाने चाहिए। एक मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हम सुबह दोपहर शाम हम आलू खाना शुरू कर दें, या कोई भी डिश हम खाना शुरू कर दें, तो वो कुछ टाइम के लिए तो हमारी बॉडी के लिए सही होगा, लेकिन उसके बाद जो है वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे ही अगर आप एक किस्म का अगर आप लगाना शुरू कर देंगे तो वो भी हमारे एनवायरमेंट को फिर खराब करना शुरू कर देगा। अल्लाह ताला ने हर दरख्त का, हर पौधे का कोई ना कोई फायदा रखा है, इसलिए हमें मिक्स करके लगाने चाहिए। उसमें फिर ये है कि परिंदे, मुख्तलिफ किस्म के जानवर उन दरख्तों से फायदा ले रहे होते हैं, और ये सब चीजें जो है अल्लाह ताला ने इंसान के फायदे के लिए बनाई हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हमें जहाँ पे भी हम प्लांटेशन करें हमें मिक्स करके करनी चाहिए, ना कि एक ही पौधे को हम जो है लगाते रहें।
1: अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो हर साल कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुहिम चल रही होती है प्लांटेशन की, तो प्लांटेशन तो हम कर देते हैं, दरख्त का बीज तो हम लगा देते हैं, लेकिन फिर उसकी देखभाल जो है ना हम नहीं करते। तो आप हमें ये बताइए कि दरख्त लगाने के बाद इनकी देखभाल और बका को कैसे यकीनी बनाया जा सकता है?
0: दरख्त लगाना तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, असल है उसे परवान चढ़ाना। उसके लिए सबसे पहले तो हमें उसकी सेफ्टी हमने देखनी है कि कोई बाउंड्री वॉल है या हमने कोई उसका सेफ गार्ड हमने लगाया हुआ है, सबसे पहली चीज वो है। दूसरे नंबर पे वाटरिंग है, पानी का आप निजाम देखें, या तो नेचुरली उसे पानी मिल रहा हो, लेकिन हमारा इलाका इस तरह के यहाँ पर औसतन बारिशें भी कम हो रही होती हैं, तो इसलिए हमें जो है ना पानी का भी खास ख्याल रखना है। और तीसरे नंबर पे जो वहाँ पर लोकल कम्युनिटी है, उसके जो करीबी है, उसे भी हमने अवेयरनेस देनी है कि ये हमने पौधा लगाया है, ये क्यों जरूरी है। सबसे पहले जहां

0: भी आप पौधा लगाएं, वहां पर आप लोगों का आप इंटरेस्ट देखें, उनमें आप इंटरेस्ट डेवलप करें। कि अगर आप वहां पर उनकी केयर नहीं भी कर सकते तो उसके इर्द गिर्द
1: जैसे आपने बात की कि या दरख्त का बीज लगाना कोई बड़ी बात नहीं है।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: ईरानी सदर ताई पहुंचायो ए पाकिस्तान सऊदी ए तुर्किया विच में थेल मक्का दिफाई मुआहदे बाबत पे आगा कयो खिते में जारी चिकताण के खात्मे के हवाले से बे तफसीली गालियों कयो वयो बिनी अखबारन मौजूदा सूरत हाल में रातन में रहने ते भी इतफाक कयो नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पारां रेड सी में व्यापारी जहाज के हुसिन के हमले की मज़म्मत बहरी जहाज के हमले में टिन पाकिस्तानी के शहीद एक की जख्मी थियण की तस्दीक कर छी इसहाक डार है अड़ा हमला बेगुनाह इंसानन ए बहरी सलामती लाए संगीन खतरो है पाकिस्तान सऊदी यमनी हुकूमत से राबते में आयू रियाज में सफारतखाने के मड़न की डेह वापसी ए जख्मियों के बेहतरीन इलाज ला हिदायतों जारी क्यों
4: It's only up to the Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go in a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
5: What
4: is the
5: nature of the threat?
4: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
3: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया में थियल नेटो इजलास बाद जहाज तब्दील करे सफर करण की तस्दीक करे छी मीडिया से गालाइंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो तो मुखे घणो खतरो आहे तुर्किया मां वापसी ते बे जहाज में सफर कयो हो बे जहाज में सफर जो फैसलो सीक्रेट सर्विस ए फौज के मशवरे ते कयो हो ईरान ते भरोसो न आहे लगातार कूड़ गालाए रहियो आहे ईरान सां मामला ठीक करी रहिया आहिनि नाब नारमुज ते अमेरिका जो मुकमल कंट्रोल आहे अमेरिकी फौज असाजे उम्मीदन खां भी वधिक कमजोर निकती अमेरिका सां जंग में वधिक तजुर्बो हासिल कयो आहे जेको मुस्तकबिल जे जंगी हिकमत अमली लाइ अहम साबित थी सघे थो पासदारन इंकलाब जे कमांडर जे सलाहकार मोहम्मद रज़ा जे चयो आहे त अमेरिका सां जंग जेतिरी डिघी थींदी तजुर्बो वधिक हासिल थींदो

इराक में गुर्दन के थाकन ते वो हमलो मिजाइल से ड्रोन फायर केतरियों ही इमारतों पट थी व्यू पर नई मीडिया मौजूद ईरान अरबेल के चौधारी किरदार के पोजिशन के निशानो बनाया। ईरानी हमले बाद अरबेल सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल खराब थी रही। पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया में नौजवानों को अज आलमी ढी मल्हायो पो वे। सिंध जो नौजवान जदीद दौर में बेइल्म हुनर का महरूम। हुनरी सिख्या लाए जोगा इंतजाम न होने सबब नौजवान परेशानियों जो शिकार है। सदर आसिफ अली जरदारी है तो पाकिस्तान के नौजवानों जो अजम तवानाई ए तकलीकी सलाहतू कीमती असासो आन। नौजवानों के बाख्तियार बनाने वक्त की अहम जरूरत है। मयारी तालीम बाइज्जत रोजगार ए जिदत नौजवानों जो गडियल ख्वाहिशू आन। सिंध हाई कोर्ट में टिन एडिशनल जजिस हलफ खणी वरतो। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस जफर अहमद राजपूत एडिशनल जजिस के हलफ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान जस्टिस सुरेश कुमार ए जस्टिस शाहनवाज मेमण हलफ खयो। हलफ बरदारी की तकरीब में जजिस ए सीनियर वकील शरीक थिया।

पंजाब में पीपल्स पार्टी कश्मीर जे जिले नायब सदर समेत टे जणा कतल। पीपी कश्मीर जो नायब सदर आलमगीर कोश, संदस अजीज माशू कोश ए नाजम कोश पंजाब के इलाके दीनू शाह में हथियारबंदन कतल कयो। वारसन जो चवण है आलमगीर कोश ए संदस साथी पंजाब के अहमदपुर थाने की हद गोहवाड़ में यासीन के घर में तरसियल हुआ। हथियारबंदन हमलो कर खेन कतल कर टिन्हीं जणन के कतल कदड़ जवाबदार गिरफ्तार किया वे।

तलहार में सुल्तानी कैनाल मां निकरंदड़ महनाई की शाख में पानी कोट खिलाफ़ आबादगारन जो धरणो कुछड़ी जे आबादगारन तलहार राजू खानाणी रोड ते मुज़ाहरो करे धरणो हयो। आबादगारन जो चवण आहे त महनाई की शाख ते हज़ारे एकड़ ज़मीन आबाद थींदी आहे। पाणी खोट सबबु फसुल सड़ी रहिया आहिनि, पाणी ॾिनो वञे।

जश्न आज़ादी में ॿ ॾींहं रहिजी विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार। मलीर में जश्न आज़ादी जे मुनासिबत सां रैली कढी वई। मुख़्तलिफ़ स्कूलनि में तक़रीबूं, ॿारनि जूं तयारियूं बि ॾिसण वटां। कराची जे डाओ यूनिवर्सिटी जे ओजा कैंपस में तक़रीब। जश्न आज़ादी जे मुनासिबत सां केक बि काटियो वियो। आज़ादी जो ॾिणु क़ौमी ऐं जोश जज़्बे सां मल्हाइण वारे अज़म जो वर्जाउ।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सिंध के माथे का झूमर
4: जी एफ एम 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज़।

जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 1:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कर आला बयार जो सोना यूरिया या जो मोती जड़ो दाणो छटाई करने में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: अजरक के रंगों से रंगी
5: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
4: सिंध के दिल से निकली आवाज
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध

आपके साथ भी बन रहा है, तो आप लोगों ने परेशानी होना, बस आपको बताया जाएगा इस प्रोग्राम में कि आप किस तरह अपनी खूबसूरती का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह आप अपने खूबसूरत से चेहरे को मजीद ब्यूटीफुल, पुरकशिश और हसीन बना सकते हैं। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर आप हमारे साथ नाचो दे तो आप लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं। So listeners, presenting the most beautiful, fantastic, interesting and entertaining character, your RJ and your DJ, Sidra Muskan, naam to sunai hoga. To bilkul aapke Sidra ke saath maujood hai janab, is beautiful se program mein aap logo ko beautiful banane ke liye, to ready ho jaiye beautiful banne ke liye. Aise ke saath saath yahan par bahut sare log hamare saath maujood hai, to chaliye ji jaldi jaldi se apne haal chaal batate jaiye. So dear listeners, and the kaif halat hai, kaise hai aapki halat hai? Umeed hai shadidan ke bilkul theek thaak honge, subkul mood ke saath subkul program ka intezar kare honge. To aapki jo intezar ki ghadiyan thi wo khatam ho chuki hai, finally yahan par ने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता है ना, जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक। तो पूरे 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ, बहुत ज्यादा बातों के साथ, बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक कलेक्शन के साथ और बहुत ज्यादा ब्यूटी टिप्स के साथ साथ। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो कि आप इस्तेमाल करेंगे अपनी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए, इसी के साथ से चाहे आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, भाई जान रेडी हो जाइए अपनी खूबसूरती को जरा एनहेंस करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए, आपके फ्री होकर हमारे इंतजार कर रही थी, ऐसे बहुत सारी अंटियां, अम्मियां, खालाएं, बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्के समा लाने का काम करती हुई ये सिद्रा। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्के समा लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं, आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी आज प्रोग्राम में एक बहुत ही खूबसूरत से मिली नगमे के साथ। भाई मिली नगमा हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि 14 अगस्त बहुत करीब आ चुका है और देखा जाए तो 14 अगस्त हो भी फ्राइडे वाले दिन रहा है, तो फ्राइडे वाले दिन तो मेरा प्रोग्राम नहीं होता है, तो मैंने सोचा चलो भाई आज हम ऐसा करते हैं, प्रोग्राम का स्टार्ट लेते हैं तो वो जरा मिली नगमे के साथ लेते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा मिली नगमा जो कि हमारी लिस्ट में मौजूद है, हम एंजॉय करेंगे, उसके बाद जैसे ही वापस आएंगे तो बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब, व्हाइट एश एंड डीज़ कैन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीज़ कैन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। आपके सिद्धर आपके साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे जनाब, अपने होने का एहसास दिलाएंगे और आप हमारे साथ मौजूद हैं ये मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कैसे आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे वो बताते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या होने वाला है। जनाब तो आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होगा कि आपने मुझे बताना है कि आपने फर्ज का लेना है, आपके पास 5 एप्पल्स मौजूद हैं, ठीक है, दो आपने उठा लिए, बाकी आपके पास कितने बचे। ओके जी, बिल्कुल सवाल बहुत आसान है जिसका आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। आपके पास सिर्फ 5 एप्पल्स हैं, ठीक है, दो आपने उठा लिए, बाकी आपके पास कितने बचते हैं। मुझे जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए और देखेंगे कौन हमारे साथ लोग हैं जो कि भाई अपने होने का एहसास दिलाते हैं, टॉपिक को फॉलो करते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनाना चाहते हैं लेकिन आपको तरीकेकार नहीं मालूम तो ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस, दीजिए अपना नाम, लिखिए पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर। और उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 आप सर्च करेंगे तो जल्दी से जीए लाड़काना।

0: लेवल कराने वाले। लेकिन यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो आप लोगों को वेलकम कहा जाता है। सादिया हमारे साथ मौजूद दीजिए। सबसे पहले प्रोग्राम वालेकुम अस्सलाम एंड गुड आफ्टरनून। मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसी हैं? उनके अलावा तमाम के प्रोग्राम पसंद आयो सो थैंक यू। एहसन अरबानी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम उलैड इस्लाम अदर यदि ओ माई फेवरेट आज से मेरा मुस्कान कैसी हैं? मैं भी जिंदा सही सलामत हूँ और कुछ दिनों के बाद आया हूँ शो में शर्मा के उठी भैया नन्ना बाबा वेरो वेरो और अखलाक बलूच हमारे साथ मौजूद है, भाई को वेलकम कहते हैं और ईसार दास हमारे साथ गोट आलम खान जरवार खान ईसर दास बेल अजी ईज जरवार प्रोग्राम सुठो हली रहे हुआ है। थैंक यू सो मच मोहब्बतू एंड भावन जो तमाम चौथा भली करी आया दर्दे दिल हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी आप कैसी हैं? क्या हाल है जानी का? साथ साथ हम भी आ गए, बहुत शुक्रिया स्वीटू। हिदायतुल्लाह कहते हैं सलाम कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? कहते हैं 12 अगस्त मुबारक हो, आपको भी जी बहुत मुबारक हो। ऐसे नारबाणी कहते हैं हमारे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अली मुर्तजा हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून कहते हैं कैफा हालुक या हबीबी हालुक सफा भलो ताम उदाय की आयो मजे में आयो। असार दास कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, फोजिया सुमरो की आवाज में सॉन्ग सुनाए मेहरबानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल जी। हिदायतुल्ला कहते हैं बाकी पांच अच्छा टॉपिक का जवाब देते हैं। सही सही सही सही सही। अच्छा ये हमारे साथ निदड़ी भी मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम स्वीटी वेलकम टू शो टॉपिक। अच्छा सही सही टॉपिक का जवाब देते जाइए। और अली मुर्तजा कहते कॉमन सेंस के लिए सेंस का होना जरूरी है इसीलिए हाँ बिल्कुल जी। पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। और आज मैंने आप लोगों से जो सवाल पूछा है उसका जवाब देते जाइए। मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि आपके पास पांच एप्पल्स मौजूद हैं, ठीक है, आपने दो उठा लिए, बाकी आपके पास कितने बचते हैं? इसी के साथ साथ आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, दोस्तों को जरा मेंशन करते जाइए और उसके अलावा बताइए उन्हें भी कि मार्केट में व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं, तो जल्दी से जाइए परचेज करके आइए और इस्तेमाल करते जाइए ताकि आपको भी मिले ऐसी खूबसूरती जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते थे। ऐसे के साथ साथ टाइम हुआ जाता है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आएंगे। आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ दीजिए और पूरी पूरी तीन बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।
1: It's 1:30.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
2: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुन रहे हैं
1: DAFM 88
0: नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तव्हां खे ख़बर पइजी वेंदी छो त व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिसको भाई नेचुरल अज़ा से तैयार किया गया है। सबसे पहली बात तो अगर नेचुरल अज़ा से तैयार किए गए प्रोडक्ट्स आप ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं तो आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर एलोवेरा है, मिल्क है, एवोकाडो है, ये तमाम चीजें जो है ना व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर एड की गई है। और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम आपकी जिल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम तैयार की गई है। आपकी जिल्द को नरम, मुलायम और तरोताजा बनाने में मदद देती है। व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपके चेहरे की खुश्की, दाग धब्बे, बेरोन की ये सारी चीजें कम हो जाएगी और जबकि आपकी जिल्द जो है वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब जितनी भी खास नेचुरल सी चीजें आपकी जिल्द की हिफाजत करते हैं और कुदरती खूबसूरती को उजागर भी करते हैं और रोजाना इस्तेमाल से आपका चेहरा फ्रेश, खूबसूरत और पुरकशिश नजर आना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए। बहुत ही परफेक्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट है जनाब, जो कि आप ऑल स्किन टाइप के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द हजरात, खवातीन, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ओके, जो नखा अलावा साबुन जी तव्हांखे ख़बर आहे व्हाइटिश जो साबुन तव्हां इस्तेमाल करे सघो था। वरी अगरि तव्हां व्हाइटिश जो फेस वॉश वठो पिया तो व्हाइटिश का जो फेस वॉश है ना उसमें थोड़ा सा ये है कि भाई आप जैसे जाएंगे मार्केट, कुछ लोग ऐसे होते ना बड़े मासूम से होते जिनको भाई तव्हां कुझु बि चई छॾियो त हू हुन जो यकीन करे वेहंदा आहिनि। अगरि तव्हां इहो सोचो था त व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम तव्हां वरिती उन जे कलर जहिड़ो बिल्कुलु सेम टू सेम व्हाइटिश ब्यूटी सोप आहे, पर व्हाइटिश जो फेस वॉश वरी उन जहिड़ो छो न आहे, हिन ॻाल्हि ते थोरो वज़ाहत कंदासीं। त अगरि तव्हां व्हाइटिश जो फेस वॉश वठो था त व्हाइटिश जो फेस वॉश जेको आहे बाबा वाइटमिन सी सां तयार थियल आहे, छो त तव्हां ॾिठो हूंदो न, मतिलबु इहा चीज़ हिकिड़ी कॉमन सेंस जी ॻाल्हि आहे त व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमालु कयो पिया, व्हाइटिश ब्यूटी सोप बि तव्हां इस्तेमालु कयो पिया। हाणे व्हाइटिश जो जेको फेस वॉश आहे उहो सेम त उन जहिड़ो न हूंदो न, छो त उनजी थोरी जेका क्वालिटी हूंदी उन जे अंदरि जेको चीज़ूं हूंदियूं थोरो चेंज कयूं वेंदियूं न। अगरि तव्हांखे उहो साॻियो निखार मिले त तव्हां साबुण इस्तेमालु कंदा, त फेस वॉश इस्तेमालु करण जो कहिड़ो ज़रूरु। इन लाइ तव्हांजे लाइ व्हाइटिश जेको फेस वॉश आहे उनखे नए तरीक़े सां सुठे तरीक़े सां ठाहियो वियो आहे जंहिंजे अंदरि वाइटमिन सी आहे, वाइटमिन ई आहे, जेकी बाबा तव्हांजी स्किन खे ब्राइट कंदा, एंटी एजिंग जे लाइ बि तमामु ज़बरदस्त आहे। सो व्हाइटिश जो फेस वॉश तव्हां लाज़मी ट्राई करे सघो था ऐं तव्हांजी हर स्किन जे मुताबिक़ आहे जनाब। सो तव्हांजी सेंसिटिव हुजे, ऑयली हुजे, ड्राई हुजे, कॉम्बिनेशन टाइप हुजे, हर स्किन जे मथां तव्हां इस्तेमालु करे सघो था। सो इस्तेमालु कंदी रहिए और ख़ूबसूरतियां हासिल कंदी रहिए। जनाब से जल्दी जल्दी से ये तमाम प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि वाकई भाई जान सदरा जेका गाल कया हुआ सफ़ा सही गाल कया है। ऐं उन खां अलावा तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से भी अवेलेबल करायो ऐं परचेज करण में तव्हांखे आसानी थी वेंदी। उन खां अलावा अगरि तव्हां अञा ताईं असांजे प्रोग्राम जो सवाल नाहे ॿुधो त अॼु मां खां सवाल पुछो आहे। फर्ज़ कयो तव्हां वटि पंज जेके न उहे एपल्स आहिनि, ठीकु आहे, उन्हनि मां ॿ तव्हां खयां, बाक़ी तव्हां वटि केतिरा बचा?

जी कामरान अहमद की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गाना एंजॉय कर रहे हैं और इसी के साथ साथ रीमिक्स वर्जन में है और साथ साथ आप पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए, आप हमारे साथ माजोती मुझे बताते रहिए। सादिया कहती है यहाँ पे पोइट्री है और लिखती है कि गम की बारिश ने भी तेरे नक्श को धोया नहीं, तूने तो मुझे खो दिया मैंने तुझे खोया नहीं, नींद का हल्का सा गुलाबी खुमार आंखों में था, यूं लगा जैसे वो शब को देर तक सोया नहीं। आए हाय, से ये भी बताएं कि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब भी करना है। रशीद खोसो भाई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं आपका शो बहुत अच्छा चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ हैदराबाद से, थैंक यू वेरी मच रशीद भाई। स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं अद्दा स्मार्ट हाजिर आहे, अज भी यहाँ जवाब दिया, बिल्कुल तव्हांखे जवाब ॾियणो पवंदो, तव्हांखे मोकल थोड़ी ॾींदासीं। अच्छा अली मुर्तज़ा कहते हैं प्ले, ओके गाना आपने बोला है जो कि बहुत अच्छा गाना है, डेडिकेट दिलावर देरो एंड जलपरी के नाम डायरेक्ट चुड़ेल मावरी जलपरी थी भाई, जस्ट सुने साने की।

Shop sind wir hier bei Tisch. And Day Skin Beauty Show. Sponsored by My Tisch Beauty Products and Day Skin Beauty Products. Okay, क्या बात है आप लोगों की पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और यहाँ पर फलक शबीर की बहुत ही सुंदर सी आवाज आप एंजॉय कर रहे हैं सुंदर बनना चाहते हैं तो YTH ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो जो मैंने सुना है ना तो मेरे जहन पे ये सवार हो गया है पड़ेगा हाँ मेरी जान उसका ये असर हो गया है मेरे दिमाग के ऊपर तो ये कुछ चीजें ऐसी होती अगर हम सुन लेते ना या देख लेते ना तो फिर वो हमारे जहनों पर सवार हो जाती बिल्कुल वैसे ही

क्या बात है। इसी के साथ साथ यहाँ पर व्हाइट एश लवली क्रीम है, व्हाइट एश लवली क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम एक ऐसा फार्मूला है जो कि आप इस्तेमाल करते ना सिर्फ आपको खूबसूरती मिलेगी बल्कि आपके चेहरे की हिफाजत भी होगी। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम के अंदर जो है ना विटामिंस का फार्मूला तो भर भर के डाला गया है, लेकिन साथ साथ सनस्क्रीन भी एड की गई है। सनस्क्रीन का काम ये होता है कि आपकी स्किन पर जो है ना ये सूरज के खतरनाक से असरात आ जाते हैं, आपकी स्किन को डैमेज कर देते हैं, आपकी स्किन को मरा हुआ बना देते हैं। तो उसे जिंदा करने के लिए, उसे निखार में जो है ना वो बेहतरीन तरीके से लाने के लिए व्हाइट एज लवली क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल जो है ना ये सारे लोग ही कर सकते हैं। सारे से मुराद ये कि आप मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर स्किन टोन के हिसाब से इसे तैयार किया गया है। विटामिंस का फार्मूला है जरा भर भर के विटामिंस डाले गए हैं, हर तरह का विटामिन आपको मिलेगा। जिस भी विटामिन की आपकी स्किन के ऊपर जरूरत होगी तो वो बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर लगाने के क्या तरीके कार होते हैं भाई, आप जब आपको लगे कि बस मैंने बाहर जाना है किसी काम से, आप कोई काम कर रहे हैं या स्कूल आपके बच्चे जाते हैं या फिर आप खुद पढ़ाने जाते हैं, बहुत सारे काम जो अगर आप करते हैं, तो बस आपने चुटकियों में रेडी होने के लिए व्हाइट एज लवली क्रीम का इंतखाब कर लेना है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप ट्राई करके देखिएगा, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। उनके अलावा डॉक्टर पिंपल एंट्री एक नई ट्यूब आए, डॉक्टर पिंपल एंट्री एक नई ट्यूब बाबा उन्हें माने जलाया जिनके चेहरे ते एकनी ढाढा अच्छी चुका है। एकनी अगर तुम्हारे चेहरे ते आए तो तुम्हें ट्राई करण घुर्जे डॉक्टर पिंपल एंट्री एक नई ट्यूब, जो मेडिकेटेड फार्मूलो है, आयुर्वेदिक फार्मूलो है, इनके अंदर फुल जड़ी बूटियों एड थियल है। तुम पाजे एकनी के खत्म करण चाहो था तो डॉक्टर पिंपल एंट्री एक नई ट्यूब जो इस्तेमाल तुम्हें लाजमी करो पड़ो। यह एक गाल बुधाई नहीं हल डॉक्टर पिंपल एंट्री एक नई ट्यूब जो है ना बाबा एतरे सुठे तरीके से तैयार कर तवाजी स्किन जहाँ न सिर्फ एकनी खत्म थी ना बल्कि एकनी जहाँ निशान आन कोई सड़न जो निशान आ, कोई धक जो निशान आ, नंढपण में तुम खेडा हुआ ना डाढ़ो डाढ़ो खेडा हुआ वो तक को धक लगो हो जो चेहरे से अना तीन निशान मौजूद है उनके खत्म करण चाहो था तो डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब तुम बिल्कुल लगाए सको था। ढो जबरदस्त क्वालिटी जो ही ट्यूब अव उन अलावा अगर तुम पैंती कें भी नाइट क्रीम में एड करण चाहो था तो वो भी कर सको था। फार्मूलो ठाण चाहो था तो व्हाइट एसी लवली क्रीम डॉक्टर पिंपल ट्यूब वो तुम नाइट क्रीम में एड करे सगो था तवाजी स्किन जी।

उहा सफ़ा वी आई पी थी वेंदी ऐं तव्हांजो सफ़ा ज़बरदस्त केमिकल खां फ्री फार्मूलो बि ठही वेंदो। अच्छा डॉक्टर पिंपल, एंटी एक्ने ट्यूब अगर तुम अकेले लगाने चाहो था तो इनके लगाने का तरीकेकार ढा आसान है। तुम करो पव तुम फेस वॉश कर सब का पैं तो हथन के भी क्लीन रखना कर एक्नी वो जो मूँ था कुछ ज्यादा ही पानी चेहरे की केयर करनी पवी है। सो पाँच चेहरे के पाँच हथन के चंगे तरीके से क्लीन कर सुबह जो तक रात जो यानी कि ब टाइम तक डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब लगानो पव लगे तक एहसास बबा वाह जो प्रोडक्ट एडो थदो थदो तक महसूस तुम एक्नी सफा उत जो मरी वो इन के अलावा अगर तुम चेहरे से सफा घना एक्नी आन टे मरतबा लगे सो बी बी अला कड़ी गाल विसरी वही चलो याद अचे तो बुधा सो बिल्कुल पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और इसी के साथ साथ बताइए आप कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा ये भाई साहब कहते हैं अगर सैंडल जो निशान हुए वो भी रिमूव थी वो ट्राई तो करी दिसो लगे तो अदे जाम सैंडल्स खादा है।

अच्छा निदरी कहती है वो सुना एल्विश भाई की आगे कोई बोल सकता है क्या एल्विश भाई। हाँ भाई वो भी सुना है और मतलब मैं मीमर बंदा हूँ तो समझ सकते हैं आप। हां जी एक तेरी बस खैर मंगदी पर मां यो भी मंगदी ते तमा वाइटेज प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो सही आ मकसूद मला कहते मेहरापुर से सिद्रा अभी मैं एक ख्वाब देख रहा था हर तरफ ढोल बज रहे थे फिर आंख खुली तो समझ आया ये 14 अगस्त चल रहा है और कहते हैं और जवाब देते हैं कि तीन अमरूद बाकी बचेंगे तीन अमरूद बचेंगे सही है भाई सही है। और ये मौजूद है अस्सलाम वालेकुम आपका शो वेरी नाइस है गोठ मोहम्मद तैयब थेबू से हबीबुल्ला थेबू भाई हमारे साथ है। वेलकम करती भाई को ये किसी ने लिखा है सॉन्ग सुनाए कौन सा सॉन्ग सुनाए आप कौन हमारे साथ है ये तो लिखा ही नहीं बस सॉन्ग सुनाए हाजिर बाबा सॉन्ग बुधराई था ओके जी टॉपिक को फॉलो करते रहिए और हमारे साथ मौजूद रहिए। यहाँ पर किशोर भाई कहते हैं टॉपिक आंसर 3 अगर जो मैंने दो एप्पल्स उठाए हैं वो खाए ना हो तो 5 अगर खा भी गए तो वो भी तो आपके पास हुए ना अल्लाह शुक्र दिया जी जनाब आप यहीं बैठे रहिएगा क्योंकि टाइम हो जाता है जरा हम जाएंगे यहाँ पर न्यूज ब्रेक की जाने उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाले वापसी जल्दी आप लोगों के पास आएंगे तो सुनते रहिए एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए पूरे पूरे 3 बजे तक मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाई स्टेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाई स्टेशन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: इन खतरो आहिन पाकिस्तान सऊदी अरब में हुकूमत सा राते में आई हूं रियाज में सफात खाने के
4: It's only up to the Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go in a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
5: What
4: is
5: the nature of the threat?
4: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
3: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया में थियल नेटो इजलास बाद जहाज तब्दील करे सफर करण जी तस्दीक करे छी मीडिया से गालाइंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त मुखे घणो खतरो आहे तुर्किया मां वापसी ते बे जहाज में सफर कयो हो बे जहाज में सफर जो फैसलो सीक्रेट सर्विस ए फौज जे मशवरे ते कयो हो ईरान ते भरोसो नाहे लगातार कूड़ गालाए रहियो आहे ईरान सां मामला ठीक करी रहिया आहिनि नाबन हरमुस ते अमेरिका जो मुकमल कंट्रोल आहे अमेरिकी फौज असांजे उमीदनि खां बि वधीक कमज़ोर निकिती आहे अमेरिका सां जंग में वधीक तजुर्बो हासिल कयो आहे जेको मुस्तक़बिल जे जंगी हिकमत अमले लाइ अहम साबित थी सघे थो पासदारनि इनकलाब जे कमांडर जे सलाहकार मोहम्मद रज़ा चयो आहे त अमेरिका सां जंग जेतिरी डिघी थींदी तजुर्बो वधीक हासिल थींदो ईरान जो इराक में कर्दन के थाकन ते वड़ो हमलो मिजाइल से ड्रोन फायर केतरियो ही इमारतों पट थी वयू पर नई मीडिया मूजिब ईरान अरबेल के चौधारी कर्दन के पोजिशंस के निशानो बनायो ईरानी हमले बाद अरबेल तो सूबे में सिक्योरिटी सूरतहाल वधिक खराब थी वही

0: पाकिस्तान समेत समूरी दुनिया में नौजवानन जो अज आलमी ॾींहुं मल्हायो पियो वञे। सिंध जो नौजवान जदीद दौर में बे इल्म ऐं हुनर खां महरूम। हुनरी सिखिया लाइ जोगा इंतज़ाम न हुअण सबबि नौजवान परेशानियुनि जो शिकार आहिनि। सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त पाकिस्तान जे नौजवाननि जो अज़म, तवानाई ऐं तख़लीकी सलाहियतूं क़ीमती असासो आहिनि। नौजवाननि खे बाइख़्तियार बणाइण वक़्त जी अहम ज़रूरत आहे। मयारी तालीम, बाइज़त रोज़गार ऐं जिदत नौजवाननि जूं गॾियल ख़्वाहिशूं आहिनि। सिंध हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजिस हलफ खणी वरितो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत एडिशनल जजिस खे हलफ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं ख़ान, जस्टिस सुरेश कुमार ऐं जस्टिस शाहनवाज़ मेमण हलफ खयो। हलफ बरदारी जी तकरीब में जजिस ऐं सीनियर वकील शरीक थिया। सभिनी खे पंहिंजी ज़िमेवारी समुझणी पवंदी, मसलनि जो गॾिजी हल करणो पवंदो। पुलिस एतिसाब जो सख़्तु निज़ाम आहे। 27,000 अहलकारनि ऐं आफ़िसरनि खे सज़ाऊं बि ॾिनियूं वयूं आहिनि। कराची में सिंध बार काउंसिल खे ख़िताब कंदे IG सिंध जावेद आलम ओडो चयो त पुलिस खे कंहिं सां बि ज़ाती मसलो नाहे हूंदो, राब्तनि में रहणु घुरिजे, कानून जे दायरे में कमु करणु घुरिजे, वकीलनि खे थाणनि जो घेराव न करणु घुरिजे, सोच ऐं रवैये खे तब्दील करणो पवंदो। पंजाब में पीपल्स पार्टी कश्मीर जे ज़िले नायब सदर समेत 3 ॼणा क़तल। पीपी कश्मीर जो नायब सदर आलमगीर कोश, संदसि अज़ीज़ माशूक कोश ऐं नाज़िम कोश पंजाब जे इलाइक़े दीनू शाह में हथियारबंदनि क़तल कयो। वारसनि जो चवणु आहे त आलमगीर कोश ऐं संदसि साथी पंजाब जे अहमदपुर थाणे जी हद पोइवाड़ में यासीन जे घर में तरसियल हुया। हथियारबंदनि हमिलो करे खेनि क़तल कयो। 3 ॼणनि खे क़तल कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। सन भरसा ॻोठाणे जो हिकु घर मां 5 ॾींहं पुराणो लाश हथायो आहे। पोरेत अली गुल भरमाणीअ जो लाश ताज़ो मुस्लमान थियल हक नवाज़ जे घर मां मिलियो। पुलिस जो चवणु आहे त लाश ते ज़ाहिरी तौर तशद्दुद जा निशान न आहिनि। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वधीक ख़बर पवंदी। पोरेत जे वारसनि जो चवणु आहे त अली गुल जो लाश संदसि मेघवाड़ दोस्त ताज़ो मुस्लमान थियल हक नवाज़ जे घर मां मिलियो आहे। हक नवाज़ घर भातियुनि समेत घर छॾे फरार थी वियो आहे। जांच कराए इंसाफ़ ॾियारियो वञे। तलहार में सुल्तानी कैनाल मां निकरंदड़ मेनायकी शाख में पाणीअ कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। कुझली जे आबादगारनि तलहार रोड ते मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि जो चवणु आहे त मेनायकी शाख ते हज़ारे एकड़ ज़मीन आबाद थींदी आहे। पाणी खोट सबबि फसल सड़ी रहिया आहिनि। पाणी ॾिनो वञे। सखर जे दारुलमान में पनाह वरितल औरतुनि जो इंतिज़ामिया जे नाइंसाफ़ियुनि ऐं सहूलियतुनि जे खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। मुतासिर औरतूं इमारत जी छत ते चढ़ी वियूं। नाइंसाफ़ी ख़िलाफ़ दाहूं। दारुलमान इंतिज़ामिया इंचार्ज मथां ऐं जश्न आज़ादी में 2 ॾींहं रहिजी विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार। मलीर में जश्न आज़ादी जी मुनासिबत सां रैली कढी वई। मुख़्तलिफ़ स्कूलनि में तक़रीबूं। ॿारनि जूं तयारियूं बि ॾिसण वटां कराची जे डाउ यूनिवर्सिटी जे ओजा कैंपस में तक़रीब। जश्न आज़ादी जी मुनासिबत सां केक बि काटियो वियो। आज़ादी जो ॾिणु क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाइण वारे अज़म जो वर्जाउ।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनाम।
4: हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जी क्या बात है, बहुत ही यहाँ पर अच्छे अच्छे आप लोगों के कमेंट्स हैं जिनकी जानिब हम आ जाएंगे। अच्छा तो हमारे साथ हैं जी हाँ नदरी गाना लगाते हैं जी आपके लिए, आप टेंशन नहीं क्यों ले रही है। सादिया कहती है व्हाइट एश की लवली क्रीम यूज करते हूँ, बिल्कुल जी आप यूज कीजिए। अली मुर्तजा कहते हैं नकर सिदरा नकर लगे थो तो बस छड़े सारे। ताजला कहते हैं कि सुर बनिए या आदत बनी बनी सॉन्ग हलाए जो हाजिर हाजिर हलायूं था। और दर्द दिल कहती है अमेजिंग है व्हाइट एज की लवली क्रीम। हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छी है, आप इस्तेमाल करके देखिएगा। और ये किशोर भाई कहते हैं कि एड़ो गाने में ढिचक ढिचक न हूं दो आप केतरो तू मुखे तलाश हुई लाइक बुधड़ में तो मुखे हेडफोन्स लगल हूं शायद इन वजह से मर जाए। बाकी हाँ तुम डिपेंड करे तो तुम कि बुधंदा आयो बाबा असा फुल इको वारा मानू आ इको में हलंदो आ अच्छा ए मंसारी कहते हैं मुखे नंडे होंदे खा ए दिल में धक लगो आ उन लाए केड़ो प्रोडक्ट का उन लाए तांगे खाइणो पंदो छो त ज़ाहिर आहे दिल जो धक ठीकु करणो आहे न पर ॿुधाईंदमि छा ख़बर खाई वेठो अखलाक भाई कहते हैं डी स्किन बाबा डी स्किन हाज़िर हाज़िर डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां इस्तेमालु कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे ॾाढो भलो रिज़ल्ट ॾींदी। उन खां अलावा जेकी जेकी माण्हू डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु करे रहिया आहिनि उहो बिल्कुलु ई तारीफ़ कनि पिया। अच्छा अवेलेबल जो वाकई मतलब हूँ कदें कदें कुछ गालू मुख्य समझ में ना इंदी तवे समझ में इंदी जम तालिब सोलंकी भाई है मोरो खा जो प्रोग्राम बुध पाया अदी दिलशेर तेवड़ो जो कलाम बुधाइंदा तवी मेहरबानी नवाजिश थी प्रोग्राम तमाम जबरदस्त है। थैंक यू वेरी मच प्यारा भा तुम मोहब्बतू आए अच्छा केड़ो पेज में इशू आ वो बुधायो त नथा मुखे सिर्फ यो था बुधा पेज में इशू आए केड़ो इशू आ यो भी तो बुधाए जे खबर पे बाबा मसलो केड़ो आ।

ओके जनाब, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो यहाँ पर आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ

0: कुझु कोन आहे. हीअ उहा वारी कार थी वई न जेको असांखे मतिलबु कुझु अगरि थींदो आहे त असां चवंदा अलाए छा थो थिए, अलाए छा थो थिए. अॻिलो माण्हू पुछंदा पापा छा थो थिए, चवंदा अलाए छा थो थिए. त हीअ उहा वारी कार थी वई. प्रॉब्लम आहे, मसलो आहे, पर कहिड़ो मसलो उहा ख़बर कोन्हे का. सो ॿुधायो बाबा कहिड़ो मसलो आहे पेज में, जीअं असां ख़बर पए, असां सम्झी सघूं न त छा हले पियो मुल्क जान में. इन खां अलावा पोस्ट खे तव्हां लाइक ऐं शेयर कयो पिया. मोहम्मद आरिफ बलोच मारे साथ है.
1: शराब जदू पींदे सी असी दुनिया तो वखरे.
0: वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है. थैंक यू, आप हमारे साथ हैं. डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिएगा. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके एरिया में नहीं अवेलेबल तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल करा सकते हैं. वो ऐसे क्योंकि आपको जो नंबर बता देना उसके ऊपर आप बस राबता कर लिया करें, एक छोटा सा मैसेज करेंगे या फिर आप उन्हें कॉल कर देंगे, बताएंगे कि भाईजान हमारे एरिया में नहीं मिलती डी स्किन ब्यूटी क्रीम या फिर वाइटेज के प्रोडक्ट्स, तो वो अवेलेबल करा देंगे.

क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय कर रहे हैं इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। पोस्ट को लाइक को शेयर करते रहिए, यहाँ पर टाइम हो जाता है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाया जाएगा, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे, तो आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारे साथ जी पूरी पूरी 3 बजे तक। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: It's 2:30 PM. This
1: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ मिंडीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां यह मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क। मौजूद हमारे साथ जनाब सखर बोरो मिरपुर खास मटियारी सकरण मेहरापुर मदली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट। ओके जनाब तो ढोला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके हुण साडा ढोला नहीं बनदा जानू नहीं बनदा पर तमा के छाखणो तमा के टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करनो आ ई ए लाजन वारी मोहब्बत जे कहन हुआ कदी भी ताके राज नहीं जो पांजी खूबसूरती जो ख्याल रखो बाबा सोणा थियो आई पांजी पाण सा मोहब्बत करण स्टार्ट कयो उन जे लाए तमा के टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करनो पंदो आई टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जी सब का बेहतरीन गाल त बिल्कुल ही आए त टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जी की आए ही बाबा ऑल स्किन टाइप जे लाए आए अगर तमाजी स्किन सेंसिटिव आए तो कोई भी तमा इस्तेमाल करी सको था छो तो सेंसिटिव स्किन जे मुताबिक ही इनके एड़े तरीके ये सा तैयार कयो है जो मेडिकेटेड फार्मूलो आए जो मतलब यो हों तो डॉक्टर्स इनके अंदर जो निगरानी से डॉक्टर्स तैयार किया है स्किन ब्यूटी क्रीम के तो सेंसिटिव स्किन है कड़ी भी स्किन है तवा स्किन के मथा सफा वीआईपी रिजल्ट दींदी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो तिन रात के इस्तेमाल में सफा भलो रिजल्ट दे पी सो लाजमी तवा भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो खूबसूरती जो ख्याल रखो।

லிஸ்ட் ஃபுல்லா பாபா லிஸ்ட் ஃபுல்லா அசரோ நகஜோ அணி थोरो पहिरियां ॿुधाए छॾींदा कयो लास्ट लिंक में गाने जी तव्हांखे कॾहिं बि फरमाइश न आहे कढी इहो हिकिड़ो रूल आहे सम्झो था सो बिल्कुलु तव्हां असांजे प्रोग्राम में मौजूदु आहियो ॾींहुं हमारे साथ हैं जी फज़ीला सिंधी के ॾींहुं अस्सलाम अलैकुम जी वालेकुम अस्सलाम हैप्पी वेंसडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आरजे सिस्टर सित्रा मुस्कान आप कैसी हैं मां सफ़ा भली आहियां तव्हां ॿुधाए कीअं आहियो ॾींहुं सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम इन कायनात और सभु स्वीट सिस्टर्स के नाम ओके जी सभु को वेलकम कहा

साईं बिल्कुल ॾाढो भलो गानो तव्हां ॿुधो था पर तव्हांखे छा करिणो आहे तव्हांखे पोस्ट खे लाइक ऐंड शेयर करिणो आहे उन खां अलावा हिते असां सां गॾु मौजूद आहे जी अली मुर्तज़ा लिखते हैं कि तुम मुझसे रंजिशे भी रखती हो इख़्तिलाफ भी रखती हो और कुछ ऐन नशीन ख्वाब भी रखती हो वाह साईं वाह साईं वाह ॾाढो भलो मैसेज ॾाढी भली शायरी किशोर भाई लिखते हैं कि कभी कभी तो मेरा खुद से मिलने को दिल करता है कभी कभी तो मेरा खुद से मिलने को दिल करता है मैंने बहुत कुछ सुन रखा है अपने बारे में आए हाय अब्दुल गफार भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं प्यारे भाई जन आप भी सलामत रहें हमेशा और अख्तियार अली सिंधी हमारे साथ ही प्रोग्राम सुन रहे हैं आपको खुश आमदीद कहा जाता है नदरी कहती हैं कि मैं हूँ ना फेस वॉश लवर मैं यूज करती हूँ बहुत अच्छा है फेस वॉश वाइट एज फेस वॉश ओके जी इस्तेमाल करती रहिए और हमारे साथ मेहताब अली इंटर भाई मेहताब भाई वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं ठीक ठाक है मजे में और जी कमर जमान बलोच कहते हैं अब तारे नहीं गिनते अब जागा नहीं करते खुश्क पत्तों की आवाज पे दरवाजे की तरफ नंगे पांव अब भागा नहीं करते वाह वाह

अच्छा बिल्कुल यही गाला है सभी क्यों लगे बेंजा अगर कॉमेंट पढ़ने आ लगे तो सभी चक्कर बंद हुआ पर तांचो पढ़ने आ तो सभी चक्कर खुली वा मुख्य लगे तो एतरा सारा मानो मुझे प्रोग्राम में हुआ मां सभी जो कमेंट्स पढ़ी आया पर कोई भी चलो छोड़ो छोड़ो इग्नोर मारो और आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हें खबर है तो डी स्किन जो फेस वॉश भी तुम्हें मिले पे सोचना डी स्किन जो फेस वॉश भी तुम्हारे लिए अवेलेबल आई अगर तुम मार्केट वनो तो खाली इतना मोटो जो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम्हें डी स्किन जो फेस वॉश भी परचेज करो पड़ो एंड डी स्किन जो फेस वॉश अगर तुम्हें बुधाई हल तो डी स्किन जो जो फेस वॉश है ढो जबरदस्त फेस वॉश है जैसे तुम डी स्किन जो फेस वॉश इस्तेमाल करना तो तुम्हें यहाँ गाल खबर पेजी वेंदी तो डी स्किन जो फेस वॉश एतरी जबरदस्त क्वालिटी से तैयार थो है अगर तुम्हारी स्किन से प्रॉब्लम्स आए निशाना अची वा तुम्हारी स्किन की जो रंगत है वह थोड़ी डिम थी वेंदी है या फिर ये भी कई मरतबा तो तुम उम्र का सफा घना वा लगन स्टार्ट वा अगर ये मसला तुम से गड मौजूद है तो कहना तुम डी स्किन ब्यूटी क्रीम से गड डी स्किन जो फेस वॉश मिली पो तुम्हें आराम से तेजे करीबी जनरल स्टोर से वही परचेज कर सो डी स्किन जो जो फेस वॉश है ना यो हाइलोरोनिक एसिड सीरम से तैयार थियल है जो तुम्हारी स्किन के मॉइस्चराइज कह डीपली हाइड्रेट कह तुम्हारी स्किन के क्लीन भी रख है सो मर्द मायो सभी हणी सन था जनाब ऑल स्किन टाइप के लिए है सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश ढो जबरदस्त कॉम्बिनेशन है ट्राई कर मजो अची वो अच्छा मुख्य कें फायजाली गाने की फरमाइश कर छी हुई सही गानों के डेडिकेट साकिब अली पमर हमारी साथी वालेकुम अस्सलाम कहती है मैं मायरा हूँ अच्छा मायरा वालेकुम अस्सलाम आपको वेलकम कहा जाता है कहती हाय आपकी आवाज़ सुनकर सुकून मिलता है मुझे भूल तो नहीं गई है ना आप नहीं नहीं आप मायरा याद है मुझे बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ है और आपने शायद कोई गाने की फरमाइश कर दी मैं कोशिश करती हूँ टाइम बच गया तो आपका गाना लगा देंगे और

हिदायतुल अहमदानी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे सारे दर्दी दिल आपको गाने पसंद आ रहे हैं। ऐसन कहते कोई मसलो ना ही बाबा। जीशान अली बोजदार, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद राशिद अवान हमारे साथ, माशाल्लाह प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, थैंक यू। निदली मुझे भी यही लग रहा था, इसीलिए मैं चुप करके बैठ गई। अच्छा, मीर शहनवास बोजार कहते गुड शो, थैंक यू जी। मायरा कहती है हाँ मायरा देखेंगे, बहुत शुक्रिया। और हैप्पी गर्ल आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम, माय मोस्ट फेवरेट। आज आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? मैं भी आ गई प्रोग्राम में लास्ट लिंक में, वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है।

हमारे साथ है महबूब अली मोरो सिटी से हमारी प्यारी सिस्टर सिद्रा मुस्कान. वालेकुम अस्सलाम. हेलो, हमेशा मुस्कुराती रहे, आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, वीआईपी प्रोग्राम. ओ क्या बात है, सो नाइस ऑफ यू. सिस्टर फायजा का नया गाना तो लगाइएगा. थैंक्स फरमाइश अली रजा भंड की है. ओके जी, गाना इंजॉय करें मेरे प्यारे भाई. थरी मीरवा से हमारे साथ हैं जी महबूब अली शर, रिजवान अली, इमरान अली शर. प्लीज मुमताज मोलाई सुनाइएगा. और डी स्किन वीआईपी आए, डी स्किन वीआईपी आए लगे तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कया है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम से अगर तुम डी स्किन जो फेस वॉश भी ट्राई करी सको था, समझो था. सो डी स्किन

साफ बलोट जांचानी चाचू हमारे साथ हैं प्ले शमन शमन जो गानों तो सा बुद्धो से नी चाचा आई तवा डेडिकेट कयो आहे अजरा खोसो बिस्मिल एंड मी सो थैंक यू अच्छा ये के जो पैनल ते खाली मैसेज मुखे मिलियो न पढा त समझी वंजो समझो और जागजानी चाचू कहते हैं सेकंड मैसेज है फरीहा परवेज का जिंदगी तुझे ढूंढू कहाँ गाना लगाएं डेडिकेट डॉक्टर नजमा तबस्सुम बिस्मिल रफीक एंड यू अच्छा ही सॉन्ग मां तवां खिचकवा न पंज बच्चे वाले प्रोग्राम में बुधराई

अच्छा ताहिरा भी हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम, आपको कैसी हो, आपका शो सुन रही हूँ ताहिरा, थैंक यू वेरी मच मेरी जान आप हमारे साथ प्रोग्राम में आपको वेलकम कहा जाता है और ऐसे ही आप जी स्किन ब्यूटी क्रीम और जी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करती रहें। और नखा अलावा एसन कहते हैं

ओके बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हमने एंजॉय किया और साथ ही साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से और यहाँ पर डे स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो आप जान ही चुके हैं कि डे स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम है जो कि आप लोगों को दो रातों में जो है ना बहुत अच्छे वाले रिजल्ट दे रही है मेडिकेटेड फार्मूला है और जनाब डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है इसके अंदर वो तमाम चीजें ऐड की गई हैं जो कि आपकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए काम आ सकते हैं तो डे स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डे स्किन फेस वॉश मिल रहा है बहुत ही कमाल और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल गुड़ गाएंगे जैसे लोग बोल रहे हैं भाई डे स्किन ब्यूटी क्रीम बेमिसाल आए हाय डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो डे स्किन फेस वॉश लगायो सफा सोना सोना थी बनियो अली मुर्तजा कहते इतने सारे एड्स एक भी वैसे आप किसी डॉक्टर से मशवरा कर ले क्या पता इस मसले का हल निकल ही आए कमर जमान बलोच भात वहां जो मोहब्बत हुआ इन प्रोग्राम बुधो पया हैप्पी कहती वाह वाह शो तो बहुत अच्छा है थैंक यू हैप्पी गर्ल अच्छा जवार मोहम्मद बचल चंबानी भाई हमारे साथ मौजूद है भाई को वेलकम कहा जाता है वालेकुम अस्सलाम के साथ साथ मायरा कहती हैं तरक्या बाबा शाम को भी आप शो करती हैं हां जी बिल्कुल शाम को भी शो करती हूं और आप हमारे साथ हैं थैंक यू

0: नायब वज़ीर-ए-आज़म मेसाक डार पारां रेड सी में वापारी जहाज ते हुसैन जे हमले जी मज़म्मत। बहरी जहाज ते हमले में टिन पाकिस्तानी जे शहीद ऐं हिक जे ज़ख़्मी थियण जी बि तसदीक़ करे छॾी। मेसाक डार चयो आहे त अहिड़ा हमला बेगुनाह इंसाननि ऐं बहरी सलामती लाइ संगीन ख़तरो आहिनि। पाकिस्तान सऊदी ऐं यमनी हुकूमत सां राब्ते में आहियूं। रियाज़ में सफ़ारतखाने खे मड़नि जे ॾेह वापसी ऐं ज़ख़्मियुनि जी बहितरीन इलाज लाइ हिदायतूं जारी कयूं आहिनि। पाकिस्तान सऊदी क़यादत में बहरी सलामती लाइ क़ाइम बहरी इतिहाद जो हिसो आहे। सप्लाई चीन ऐं बहरी सफ़र जे तहफ़ुज़ लाइ इतिहाद जे बदरनामे ते अमल करण लाइ सहकार लाइ तयार आहिनि। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी चयो आहे त मके दिफ़ाई मुआदो वाइज़े आहे। हिकु मुल्क खे हमले ते टिन्ही मुल्कनि ते हमिलो सम्झो वेंदो। मके मुआदे तहत ख़िते जी सलामती ऐं अमुल लाइ कोशिशूं जारी रखियूं वेंदियूं। मुआदो अमन ऐं सलामती बाबति रुॻो टिन मुल्कनि ताईं महदूदु नाहे। ख़िते में अमुन वारियूं कोशिशूं बि जारी आहिनि। वफाकी घरू वज़ीर मोहसिन नकवीअ जे ईरानी सदर मसूद पज़ीशान सां तहरान में ईरानी सदर सां मुलाक़ात। ॿिनि तरफ़नि लाॻापन ख़िते जी सूरत हाल ते ॻाल्हियूं। ज़रियनि मौजूद मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल जो ख़ासि पैगाम ईरानी सदर ताईं पहुचायो ऐं पाकिस्तान सऊदी ऐं तुर्किया विच में थियल मके दिफ़ाई मुआहिदे बाबति बि आगाह कयो। ख़िते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे जे हवाले सां बि तफ़सीली ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ॿिन्ही अॻवाननि मौजूदा सूरत हाल में राब्तनि में
1: up to the Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
2: What was the nature of the threat?
1: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया में थियल नेटो इजलास बाद जहाज तब्दील करे सफ़र करण जी तसदीक करे छॾी। मीडिया सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त मूंखे घणो ख़तरो आहे। तुर्किया मां वापसीअ ते ॿिए जहाज़ में सफ़र कयो हो। ॿिए जहाज़ में सफ़र जो फ़ैसिलो सीक्रेट सर्विस ऐं फ़ौज जे मशवरे

ईरान ते भरोसो न आहे, लगातार कूड़ ॻाल्हाए रहियो आहे। ईरान सां मामला ठीक हली रहिया आहिनि। अबना हरमुज ते अमेरिका जो कंट्रोल मुकमिल आहे। अमेरिकी फ़ौज असांजे उमीदनि खां बि वधीक कमज़ोर निकिती। अमेरिका सां जंग में वधीक तजुर्बो हासिल कयो आहे, जेको मुस्तक़बिल जे जंगी हिकमत अमले लाइ अहम साबित थी सघे थो। पासदारनि इनकलाब जे कमांडर जे सलाहकार मोहम्मद रज़ा चयो आहे त अमेरिका सां जंग जेतिरी डिघी थींदी, तजुर्बो वधीक हासिल थींदो। सूबा ठाहिण सां मुल्क टुटंदो न पर वधीक मज़बूत थींदो आहे। हिन वक़्तु मुल्क में नवनि सूबनि जो ठहणु ज़रूरी आहे। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त सूबनि जी ॻाल्हि ते इज़त ऐं गैरत जी ॻाल्हि थींदी आहे। गटर में किरी ॿार जे मरण ते गैरत छो नाहे जाॻंदी। वफ़ाक़ हर साल 8,884 अरब सूबनि खे ॾींदो आहे। समूरी रक़म सूबनि जे चइनि वॾनि वज़ीरनि खे मिली वेंदी आहे। यूसीज़ ताईं फंड्स पहुचण जो को बि निज़ाम नाहे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान ऐं KPK जे केतिरनि ई मुल्कनि खां वॾा आहिनि। जॾहिं पाकिस्तान जी आबादी 3,70,00,000 हुई त सूबा 4 ठाहिया हुआ। हाणे आबादी 26,50,000 आहे, पोइ बि 4 सूबा आहिनि। पिंडी वाक़े जी शफ़ाफ़ जांच थी रही आहे। मुल्क खे अदम इस्तक़ाम जो शिकार थियणु न ॾींदासीं। PTI जी नफ़रत ऐं इंतिशार सबबु कल ऐं 9 मई वारो वाक़ियो थियो। मुमकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पिंडी वाक़े में मुलविस शख़्स खे ज़हनी मरीज़ करार ॾेई वाक़े खां फ़रार नथो थी सघिजे। शख़्स ज़हनी मरीज़ हो त हुन पंहिंजे घर भातियुनि ते हमिलो छो न कयो? इंतिशारी सबबु PTI पाण खे ई माइनस करे रही आहे। हिन क़िस्म जी सियासत नथी हली सघे। सिंध हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजिस हलफ़ खणी वरितो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत एडिशनल जजिस खे हलफ़ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं खान, जस्टिस सुरेश कुमार ऐं जस्टिस शाहनवाज़ मेमण हलफ़ खयो। हलफ़ बरदारी जी तकरीब में जजिस ऐं सीनियर वकील शरीक थिया। सभिनी खे पंहिंजी ज़िमेवारी समुझणी पवंदी, मसलनि जो गॾिजी हल कढणो पवंदो। पुलिस एहतसाब जो सख़्तु निज़ाम आहे। 27,000 अहलकारनि ऐं आफ़िसरनि खे सज़ाऊं बि ॾिनियूं आहिनि। कराची में सिंध बार काउंसिल खे ख़िताब कंदे IG सिंध जावेद आलम मोडो चयो त पुलिस खे कंहिं सां बि ज़ाती मसलो नाहे हूंदो, राब्तनि में रहणु घुरिजे, कानून जे दायरे में कमु करणु घुरिजे, वकीलनि खे थाणनि जो घेराव न करणु घुरिजे, सोच ऐं रवैये खे तब्दील करणो पवंदो। पंजाब में पीपल्स पार्टी कश्मोर जे ज़िले नायब सदर समेत 3 ॼणा क़तल। PP कश्मोर जो नायब सदर आलमगीर कोश, संदसि अज़ीज़ माशू कोश ऐं नाज़िम कोश पंजाब जे इलाइक़े दीनू शाह में हथियारबंदनि क़तल कयो। वारसनि जो चवणु आहे त आलमगीर कोश ऐं संदसि साथी पंजाब जे अहमदपुर थाणे जी हदबोए वार्ड में यासीन जे घर में तरसियल हुआ। हथियारबंदनि हमिलो करे खेनि क़तल कयो। 3 ॼणनि खे क़तल कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। सन भरसां ॻोठाणे जो हिकु घर मां 5 ॾींहं पुराणो लाश हथायो आहे। पोरे तली गुल बुरमाणीअ जो लाश ताज़ो मुसलमान थियल हक नवाज़ जे घर मां मिलियो। पुलिस जो चवणु आहे त लाश ते ज़ाहिरी तौर तशदुद जा निशान न आहिनि। पोस्टमार्टम बाद वधीक ख़बर पवंदी। पोरेत जे वारसनि जो चवणु आहे त अली गुल जो लाश संदसि मेघवाड़ दोस्त ताज़ो मुसलमान थियल हक नवाज़ जे घर मां मिलियो आहे। हक नवाज़ घर भातियुनि समेत घर छॾे फरार थी वियो आहे। जांच कराए इंसाफ़ ॾियारियो वञे। तलहार में सुल्तानी केनाल मां निकरंदड़ मेनाकी शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। पुछड़ी जे आबादगारनि तलहार रोड ते मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि जो चवणु आहे त मेनाकी शाख ते 1,000 एकड़ ज़मीन आबाद थींदी आहे। पाणी खोट सबबु फ़सुल सड़ी रहिया आहिनि। पाणी ॾिनो वञे।

सखर जे दारुलमान में पनाह वरतल औरतन जो इंतजाम जी नाइंसाफ़ी ना सहूलतन जे कोर्ट खिलाफ़ एहतजाज मुतासिर औरतन इमारत जी छत ते चढ़ी वयूं नाइंसाफ़ी खिलाफ़ दाहूं दारुलमान इंतजाम इंचार्ज मथां तशद्दुद इलाज न थियण सहूलतन जी कोर्ट जूं दाहूं कयूं औरतन मौजूब खेन का बि सहूलत नाहे खाधो ऐं पाणी बि नथो ॾिनो वञे सेवण ऐं गेरले में स्कूलनि जूं छितियूं किरण सबबि ॿिनि उस्तादनि समेत सत शागिर्द ज़ख़्मी सेवण जे सखी सुल्तान पाड़े जे गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में टी क्लास जा चापुड़ किरिया उस्ताद अब्दुल हादी मेमण शागिर्द कशफ दुआ तौफ़ीक ऐं शाहिद सोलंगी ज़ख़्मी थिया केरले में बि प्राइमरी स्कूल जी इमारत ज़बून चापुड़ किरण सबबि मास्तराणी समेत टे शागिर्द ज़ख़्मी स्कूल जा चापुड़ किरण सबबि मास्तराणी समेत अनाया शाहज़ेब ऐं अली शाह ज़ख़्मी थी पिया शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज

सखर मां 9 क्लास जी शागिर्दियाणी पुरसरार तौर गुम अगवा जो केस दाखिल। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल जी शागिर्दियाणी शिफा मंगी पुरसरार नमूने गुम थी। अब्दुल मनान मंगी जी फरियाद ते सी सेक्शन थाने ते अगवा जी FIR दाखिल कई वही। केस में हसनैन मंगी, हमजा काजन मंगी ए बेन अणजातल माण्हुनि खे नामज़द कयो वियो। फरियादी अब्दुल मनान मंगी जो चवण आहे त खैरपुर वासी नौजवान हसनैन मंगी धीअ खे स्कूल ईंदे वेंदे तंग कंदो हो। हसनैन मंगी धीअ खे अगवा कयो वियो आहे।

0: जश्न आज़ादी में ब ॾींहं रहिजी विया। सिंध समेत समूरे मुल्क में जश्न मल्हाइण जूं तयारियूं जारी। सिंध जे नंढनि वॾनि शहरनि में क़ौमी झंडनि जी बहार। मलीर में जश्न आज़ादी जे मुनासिबत सां रैली कढी वई। मुख़्तलिफ़ स्कूलनि में तकरीबूं, ॿारनि जूं तयारियूं बि ॾिसण वटां। कराची जे डाउ यूनिवर्सिटी जे ओझा कैंपस में तकरीब। जश्न आज़ादी जे मुनासिबत सां केक बि काटियो वियो। आज़ादी जो ॾिणु क़ौमी जोश ऐं जज़्बे सां मल्हाइण वारे अज़म जो वर्चाउ।
1: सोलर ए बैटरी
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: जदीद टेक्नोलॉजी से तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जैसे मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाबी करे फसल के अनाब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
4: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात। सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत कार्ड को स्क्रैच करें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: man. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
3: GFM 88 नेटवर्क सिंध

0: हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी
1: जदीद टेक्नोलॉजी सां तयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।

0: मेहरान की शान, वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: ये वादा है तुमसे ना याद।
2: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रैनुला।
5: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी जी ईरानी सदर मसूद पजिकशान से तेहरान में ईरानी सदर से मुलाकात, बिन तरफन लागापन खिते की सूरत हाल से गालू जरियन मौजूद मोहसिन नकवी वजीर आजम फील्ड मार्शल जो खास पैगाम ईरानी सदर तक पहुंचाया है। पाकिस्तान सऊदी तुर्किया विच में थियल मके दिफाई मुहदे बाबत भी आगाही कई, खिते में जारी चिकताण के खात्मे के हवाले से भी तफसीली गालू क्यू। बिन्हीं अगवान मौजूदा सूरत हाल में राबतन में रहन से भी इतफाक किया।
6: It's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
7: What is the nature of the threat?
6: I guess there was a threat out there. I didn't really ask them much about it. I get a lot of threats.
5: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्किया में थियल नेटो इजलास बाद जहाज तब्दील करे सफर करण की तस्दीक करे छी। मीडिया से गालाइंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो तो मुखे घणो खतरो आहे, तुर्किया मां वापसी ते बे जहाज में सफर कयो हो, बे जहाज में सफर जो फैसलो सीक्रेट सर्विस ए फौज के मशवरे ते कयो हो। ईरान ते भरोसो ना है, लगातार कूड़ गालाए रहो आहे। ईरान सा मामला ठीक हली रहा है, नाबना हरमुज ते अमेरिका जो मुकम्मल कंट्रोल आहे। अमेरिकी फौज असाजे उम्मीदन का भी कमजोर निकती, अमेरिका सा जंग में तजुर्बो हासिल किया है, जो मुस्तबिल जंगी हिकमत अमली लाए अहम साबित थी सके तो। पासदारन इनकलाब के कमांडर के सलाहकार मोहम्मद रजा है अमेरिका सा जंग जितनी डिगी थी तजुर्बो हासिल।

मजबूत थींदो आहे। हिन वक़्तु मुल्क में नवनि सूबनि जो ठहणु ज़रूरी आहे। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो त सूबनि जी ॻाल्हि ते इज़त ऐं ग़ैरत जी ॻाल्हि थींदी आहे। गटर में किरी ॿार जे मरण ते ग़ैरत छो न आहे जाॻंदी। वफ़ाक हर साल 8,884 अरब सूबनि खे ॾींदो आहे। समूरी रक़म सूबनि जे चइनि वॾनि वज़ीरनि खे मिली वेंदी आहे। यूसिस ताईं फंड्स पहुचण जो को बि निज़ाम नाहे। पंजाब सिंध बलोचिस्तान के पी जे केतिरनि ई मुल्कनि खां वॾा आहिनि। जॾहिं पाकिस्तान जी आबादी 3,70,00,000 हुई त 4 सूबा हुआ। हाणे आबादी 26.5 करोड़ आहे, पोइ बि 4 सूबा आहिनि।

0: शफाफ जांच थी रही आहे। मुल्क खे अदम इस्तेकाम जो शिकार थियण न ॾींदासीं। पीटीआई जी नफ़रत इंतिशार सबब कल ऐं 9 मई वारो वाक़ियो थियो। मुनक़िदी वज़ीर तलाल चौधरी चयो आहे त पिंडी वाक़िए में मुलविस शख़्स खे ज़हनी मरीज़ करार ॾेई वाक़िए खां फ़रार नथो थी सघिजे। शख़्स ज़हनी मरीज़ हो त हिन घरबातियुनि ते हमिलो छो न कयो? इंतिशारी सियासी सबबु पीटीआई पाण खे ई माइनस करे रही आहे। हिन वक़्त जी सियासत नथी हली सघे। सिंध हाई कोर्ट में टिन एडिशनल जजिस हलफ खणी वरितो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत एडिशनल जजिस खे हलफ खणायो। जस्टिस मोहम्मद हुमायूं ख़ान, जस्टिस सुरेश कुमार ऐं जस्टिस शाहनवाज़ मेमण हलफ खयो। हलफ बरदारी जी तकरीर में जजिस ऐं सीनियर वकील शरीक थिया। सभिनी खे पंहिंजी ज़िमेवारी सम्झणी पवंदी। मसइलनि जो गॾिजी हल करणो पवंदो। पुलिस एहतसाब जो सख़्त निज़ाम आहे। 27,000 अहलकारनि ऐं आफ़िसरनि खे सज़ाऊं बि ॾिनियूं आहिनि। कराची में सिंध बार काउंसिल खे ख़िताब कंदे आई जी सिंध जावेद आलम ओडो चयो त पुलिस खे कंहिं सां बि ज़ाती मसइलो न आहे हूंदो। राब्तनि में रहणु घुरिजे, कानून जे दायरे में कमु करणु घुरिजे। वकीलनि खे थाणनि जो घेराव न करणु घुरिजे। सोच ऐं रवैये खे तब्दील करणो पवंदो। पंजाब में पीपल्स पार्टी कश्मोर जे ज़िले नायब सदर समेत 3 ॼणा क़तल। पीपी कश्मोर जो नायब सदर आलमगीर कोश, संदसि अज़ीज़ माशू कोश ऐं नाज़िम कोश पंजाब जे इलाइक़े दीनो शाह में हथियारबंदनि क़तल कयो। वारसनि जो चवणु आहे त आलमगीर कोश ऐं संदसि साथी पंजाब जे अहमदपुर थाणे जी हद बोए वार्ड में यासीन जे घर में तरसियल हुआ। हथियारबंदनि हमिलो करे खेनि क़तल कयो। 30 ॼणनि खे क़तल कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। सन भरसां ॻोठाणे जो हिकु घर मां 5 ॾींहं पुराणो लाश हथायो आहे। पोइ तलीगुल बुरमाणीअ जो लाश ताज़ो मुसलमान थियल हक नवाज़ जे घर मां मिलियो। पुलिस जो चवणु आहे त लाश ते ज़ाहिरी तौर तशद जा निशान न आहिनि मिलिया। पोस्टमार्टम बाद वधीक ख़बर पवंदी। पोरेत जे वारसनि जो चवणु आहे त अलीगुर जो लाश संदसि महंगवार दोस्त ताज़ो मुसलमान थियल हक नवाज़ जे घर मां मिलियो आहे। हक नवाज़ घर भातियुनि समेत घर छॾे फरार थी वियो आहे। जांच कराए इंसाफ़ ॾियारियो वञे। तलहार में सुल्तानी कैनाल मां निकरंदड़ महनाइकी शाख में पाणी कोट ख़िलाफ़ आबादगारनि जो धरणो। कुचरी जे आबादगारनि तलहार रोड ते मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। आबादगारनि जो चवणु आहे त महनाइकी शाख ते हज़ारे एकड़ ज़मीन आबाद थींदी आहे। पाणी कोट सबबु फसल सड़ी रहिया आहिनि। पाणी ॾिनो वञे। सखर जे दारुलमान में पनाह वरितल औरतुनि जो इंतिज़ाम जी नाइंसाफ़ियुनि ऐं सहूलियतुनि जी कोर्ट ख़िलाफ़ एहतजाज। मुतासिर औरतूं इमारत जी छत ते चढ़ी वियूं, नाइंसाफ़ी ख़िलाफ़ दाहूं कयूं। दारुलमान इंतिज़ामिया इंचार्ज मथां तशदुद, इलाज न थियणु, सहूलियतुनि जी कोर्ट जूं दाहूं कयूं। औरतुनि मौजूदु खे का बि सहूलियत नाहे। खाधो ऐं पाणी बि न ॾिठो ॾिनो वञे। सेवण ऐं गेरले में स्कूलनि जूं छितियूं किरण सबबु ॿिनि उस्तादनि समेत 7 शागिर्द ज़ख़्मी। सेवण जे सखी सुल्तान पाड़े जे गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल में 3 क्लास जा चापुड़ किरिया। उस्ताद अब्दुल हादी मेमण, शागिर्द कशफ दुआ तौफ़ीक ऐं शाहिद सोलंगी ज़ख़्मी थिया। गेरले में प्राइमरी स्कूल जी इमारत ज़बून चापड़ किरण सबबु मास्तराणी समेत 3 शागिर्द ज़ख़्मी। स्कूल जा चापुड़ किरण सबबु मास्तराणी समेत।
1: सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए। जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जंहिंजो मोतीअ जहिड़ो दाणो छटाई करण में आसान, ॾिए नाइट्रोजन खे देर ताईं दस्तियाबी, करे फसल खे अञा बि शानदार। सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टीअ जो मान वधाए।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: जीए FM 88 नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: जदीद टेक्नोलॉजी सां तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है
4: सुनते रहो जी एफ एम 90.8।

0: मिट्टी जा रंग रौनकू ए जरखेजी असाजे हारी साईं ताहिन आबाद हाने इन जो अन्याप वधी का मान वधायन लाए तमासा गड़ाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणू छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताईं दस्तियाबी करे फसल के अन्याप शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, जिंदगी आवाज़।

रही हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सिंध के माथे का झूमर
2: DFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हिन मिट्टी जा रंग रौनकू ए सरखेज़ी असा जे हारी साई ताहिन आबाद हाणे इन जो अन्याब वधी का बान वधाइण लाए तमा सा गदाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जें जो मोती जड़ो दाणो छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तयाब करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्ररा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: चली दिल खत्म कर इतने मामलों

रही हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।

0: काश हमारे पास जैसी गाड़ी होती चमचमाती भी।
1: चलो दिल को संभाल के रखो दुल्हन, ये ना हो कि गाड़ी के चक्कर में तुम्हारा ये ड्राइवर के हाथ से निकल जाए।

0: It's 6:15 PM.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनामात।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: शहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: सिंध के माथे का झूमर
0: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज

0: मिट्टी जा रंग रौनकू ए जरखेजी असाजे हारी साई ताहन आबाद हाने इन जो अन्याब वधी का मान वधायन लाए तमासा गदवाए सोना यूरिया ग्रेनुलर जदीद टेक्नोलॉजी सा तैयार कयल आला मयार जो सोना यूरिया जो मोती जड़ो दाणू छटाई करण में आसान ये नाइट्रोजन के देर ताई दस्तियाबी करे फसल के अन्याब शानदार सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ए जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ए चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ए दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
2: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें खरीदें और पाएं बेशुमार कीमती इनामात
3: अजरक के रंगों से रंगी
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी
3: सिंध के दिल से निकली आवाज
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज हर चप्पा हर गोशा
3: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत। सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
3: ढाडो सुठो
2: GFM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: It's 7:15 p.m. This time check is brought to you by
1: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: सिंध के माथे का झूमर
3: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: सोना से है कामयाबी स्कीम के तहत सोना की जदीद और ज्यादा अफादियत वाली खादें कंपनी के मुकर्रा डीलर्स या सोना सेंटर से खरीदें और इजाफी पैदावार के साथ पाएं बेशुमार कीमती इनाम। बैग में मौजूद कार्ड को स्क्रैच करें और इनाम की वसूली तक कार्ड को महफूज रखें। इनाम निकलने की सूरत में मुकर्रा डीलर्स, कंपनी के दफातर या करीबी सोना सेंटर से राब्ता करें।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: हर चप्पा हर गोशा।
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

सुनते हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

जी अब्दुल सत्तार भयो चवे। शामराद मिदरी खा फरमाश ऐं दिलमुराद मिदरी खा फरमाश ऐं मुदसर मिदरी शहर सिबिका।

0: हेलो
1: हे नायल, आर यू फ्री? कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं कह रहे थे ना?
0: नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, बोलो।
1: असल में मुझे अपनी दोस्त के घर से नोट्स पिक करने हैं। कैन यू प्लीज टेक मी देयर?
0: हाँ, तुम बस रेडी हो जाओ, मैं आ रहा हूँ।
1: यू आर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो।
0: सी यू।